0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

और आप दोनों बैठ के गपशप लगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये तरीका भी नहीं। और क्योंकि बाज लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पर्दे की आड़ लेकर बिल्कुल अपने बेडरूम में बंद होकर बैठ जाती हैं कि जी खाना ला दो, जी फलाने ये कर दो, फलाने ये कर दो। ये इंतहाई गलत तर्ज अमल है। जब आप एक बहू की हैसियत से किसी घर में मौजूद हैं तो खाना पकाना भी होगा आपको। मैंने इसी हिजाब के साथ पकाया भी है, निकाला भी है, सर्व भी किया, बर्तन भी धोए हैं, झाड़ू भी लगाए, सब कुछ किया, अपना काम किया, जरा सा घूंघट खींच लिया। दूसरा यह है कि साथ साथ एहसास भी दिलाया कि वो बिला वजह इंटरफियर ना करें। देखिए कि आपके अपने अंदर एक बैरियर होता है, उससे आगे ना बढ़ने दें दूसरे को। इस तरह की पोलाइटली बात मत करें कि दूसरे को एक खाम खा की शे मिले। और करख्तगी में भी बात ना करें, नॉर्मल रवैये में आप बात करें। लेन देन भी होगा, काम भी होगा, मेहमान के तौर पर भी वो आएंगे, तो उसमें अपनी हदूद आपने खुद कायम कर ली, इसमें कोई और आपको फतवा नहीं दे सकता। और बाज़ुकत घर इतने छोटे होते हैं कि एक ही घर में अगर उनकी किसी जरूरत से आपके शहर में आए तो आप ही के घर में वो आ रहे हैं, तो उसमें अब ये तो नहीं आप कर सकेंगे कि बिल्कुल अलग कर दें उनको। अगर मुमकिन हो तो अलग ही हो, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर यह है कि अपना काम काज अपनी जरूरत के मुताबिक करते चले जाएं। अमूमन मैंने देखा कि भाभी और देवर बैठ के लतीफे सुना रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बाज़ुकत पंजाब में मैंने ये रवाज तक देखा कि छोटा देवर है तो उसको दुल्हन की गोद में बिठाते हैं, और इसी तरह जूती छुपाई और पता नहीं दूध पिलाई। और ये खासतौर पर जो शादी के बाद की रस्में होती हैं, दुल्हन बनी बैठी औरत और उसका घुटना एक नामहरम आके पकड़ रहा है, ये कहाँ की हया और कहाँ का कल्चर है? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शोहर और वालदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत की एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले वहां कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताती हैं, हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान हमारे दिलों में डालता है। ऐसे देवर जो बच्चे से थे और हमारे साथ रह रहे हों, उनके जवान होने पर उनके साथ क्या मामला होगा? क्या उनको बच्चों या भाइयों की तरह लिया जा सकता है? अपने बच्चे भी अगर बड़े हो जाएं, और अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो भी जब आप सतर की हालत में नहीं या जीनत की हालत में हैं तो वो भी इजाजत लेकर आएं, और जब वो बड़े हो जाएं, ये देखिए ये वाज़े जवाब कुरान ने आपको दिया है, वइज़ा बलगल अत्फालु मिनकुमुल हुलुमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ वो भाई होता है जिसको माने जाना हो या बाप की तरफ से, या फिर रजाई भाई जिसने साथ दूध पिया हो। बस हमारे माशरे में जो मुंह बोले भाइयों की किस्में हैं, कोई भाई नहीं है। किसी से भी हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है वरना खुद को मुसीबत में डालेंगे। हाँ, अखलाकी तौर पर आप किसी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको भाई कह के पुकार सकते हैं, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि किसी को भाई कह देना इस तरह, उसमें एक बावकार और एक एहतराम और एक पाकीजा बात हो जाती है। लेकिन भाई कहना और भाई समझना और भाई समझ कर फिर मजीद हदें अल्लाह की तोड़ते चले जाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देवर को भाई कह सकते हैं आप, लेकिन वो भाई नहीं है, वो देवर है। क्या देवर के अलावा जेठ से भी पर्दा है? क्या वो किसी और नस्ल से ताल्लुक रखता है? अब आप कहते हैं कि मैं सवालों के जवाब न दिया करूं। हाँ, अगर देवर या बहनोई हाथ मिलाएं तो क्या करें? वही करें जो किसी भी गैर मर्द से हाथ मिलाते हुए करना चाहिए। आपको मैंने शायद पहले बताया कि मैं जब पहले दिन अपनी पीएचडी के लिए गई तो मेरे सुपरवाइजर जो था उसने, सबकी आदत है और बहुत सी मुसलमान लड़कियों से मिलाते हैं हाथ,
تو وہ اپنے آفس میں تھا، جو ہی میں نے دروازہ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समाइन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलक सदीक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, काफी अरसा से वो अलील थे। आज उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर मलक साहब का पैगाम सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब राज साहब। राज साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंशाल्लाह अब तंदुरुस्त हो गया अल्लाह के फजल करम से, और बहुत जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह दोबारा हम नए सिरे से रौनक लगाएंगे और अपने मुस्लिम लीग के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहता हूँ।
1: समाइन, मलक साहब ने कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल को अपना पैगाम सेहत याब होने के बाद पहली दफा मीडिया पर
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। समय ये मिला जुला प्रोग्राम है। समाइन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम रहमतुल्ला बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज है।
1: बेग साहब, आप इतनी बड़ी जमात की, अपोजिशन की जमात के आप सदर हैं, लेकिन आपकी आवाज कमजोर हो जाती है जब आप माइक पे बोलते हैं।
2: यार मैं तो बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाज भी ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। पता नहीं ये कोई रेडियो या फोन के सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है।
1: बेग साहब चलें, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये भी आज कोरोना वायरस का प्रोग्राम है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे सामाइन को?
2: इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहें और अपने बच्चों के जरिए सारी चीजें मंगवाएं बाहर से और एहतियात करें और डेली जो है ना वो आप नहाएं। सुबह जो है ना जरूर हर आदमी जो है डेनमार्क रहने वाला पाकिस्तानी उसको चाहिए साबुन से अच्छी तरह नहाए और अपने बाल वगैरह सारा बदन साफ करे और दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले खाने के बाद आप अब साबुन से हाथ धोया करें अच्छी तरह और ख्याल रखा करें आप कि आपके बच्चे जो है वो भी हाथ धो के खाना खाए। और दूसरा, और जिसको ये तफीफ हो कि शक हो कि उनको ये सिम्टम है तो उनको चाहिए कि फौरन से पहले जो यहाँ के जो दिए हुए नंबर है उन पर फोन करें और टाइम ले और टाइम लेके अपने आप को चेक करवाएं।
1: बेग साहब अच्छी बात है। बेग साहब, एक तो आपके जो लीडर हैं या आपके स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सदीक साहब, आपको मुबारक हो। आज उनका मैसेज जो है हमने अदारा आपकी आवाज़ पर हमें भेजा था उन्होंने ईद के हवाले से, तो आज मैसेज उनकी वॉइस जो है हमने अपने सामान के साथ शेयर की है, आप क्या कहेंगे?
2: जी ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत अता फरमाए, हमें तो बहुत खुशी है। इंशाल्लाह चंद रोज के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मलिक मोहम्मद सदीक साहब वो सदारत करेंगे इजलास की और इंशाल्लाह ताला सारे लोग देखेंगे वो सेहतमंद होके दोबारा अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
1: बेग साहब, 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है, 14 अगस्त के हवाले से आपका कोई प्रोग्राम है?
2: जी हमारा हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और इस साल भी है और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
1: चलें, इस वक्त मतलब 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम है?
2: जी जी बिल्कुल, हर साल होता है भाई जान।
1: बेग साहब, इस वक्त कोई कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहें?
2: कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आपका रेडियो जो है उनको गाइड कर रहा है, इसमें और भी कोई लोग हैं जो कम्युनिटी में, आप चेयरमैन है कम्युनिटी के, आपसे बेहतर मैसेज कौन दे सकता है आवाम को।
1: चलें बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी राज साहब वेलकम, जब भी चाहे मैं हाजिर हूँ आपकी, जो जब भी चाहे।
1: बहुत शुक्रिया बेग साहब। समान ये थे रहमतुल्ला बेग साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ آج مختلف ممالک سے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کے اپنے جانے بجانے کامران جو کہ پاک عمل کلچر سوسائٹی سویڈن مالمو کے صدر ہیں اور نوجوان سیاستدان بھی ہیں، اور ایز اے مجسٹریٹ بھی جو ہے وہ اپنا سویڈن میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل کام بھی وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مالمو کی فضاؤں سے موجود ہیں۔ کامران، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ آپ کا رہ صاحب، مجھے اپرچونیٹی تھی، بہت مہربانی آپ کی، اور میری طرف سے آپ کے سارے سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔
1: خیر مبارک۔ کامران، سب سے پہلے آج بھی یہ کرونا وائرس کا پروگرام ہے، سب سے پہلے ہم بات کرونا وائرس ہی کریں گے کہ اب کرونا وائرس کا جو ہے وہ کرونے کا کیا حال ہے سویڈن کرونے کا؟
2: آپ کو پتا ہی ہے جیسے کہ سویڈن نے سٹیٹسٹک جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے، آپ کو پتا ہی ہے کہ سویڈن نے مطلب لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو ابھی جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میرے جو تقریباً 2-3 دن پہلے ہم پرائم منسٹر سٹیفن لووین کا بھی میسج آیا تھا کہ اس وقت کرونا جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے سویڈن میں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مطلب ہے کہا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے یعنی ہم نے جو اپنائے تھے اس کو مطلب ہے شکست دینے کے لیے، وہ ہمیں اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی یعنی ابھی تک کوئی اس طرح خاص کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، ابھی تک موجود ہے، لیکن آپ مطلب کوشش کریں اور اس کو مطلب ابھی تک سوشل ڈسٹینس کو بھی آپ بالکل اس کو کیپ کنٹینیو رکھیں، اور کوشش کریں کہ مطلب اس سے ہاتھ دھوئیں، اور مطلب اگر کوئی بھی آپ کو سمٹم ہو، کھانسی، بخار، نزلہ، یا کوئی سر میں درد، یا کسی قسم کا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کائنڈلی گھر پہ رہیں۔ اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ ایپس بھی بنا دی ہیں، اور ٹیلی فون نمبر بھی رکھ دیے ہیں، میں آپ کی توسط سے بھی یہ یعنی یہ کروں گا کہ 1177 یہ ایک اسپیشل نمبر ہے کہ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سچویشن ہو بہت زیادہ آپ کی یعنی زندگی کی جو موت کی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن بہت ورس ہو گیا، تو 112 کو بھی آپ کائنڈلی نا کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہاں پر 111 جو اور 77 یہ جو نمبر ہے، تو یہاں پر آپ جا کر کائنڈلی مطلب ہے اگر آپ کا ٹیسٹ کروانا ہے COVID-19 کا، تو یہاں پر بھی آپ اپنے فون کر سکتے ہیں، سمٹم کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ آپ کا مطلب ہے کارآمد ایک جو COVID-19 کا ٹیسٹ آپ بکنگ کر سکتے ہیں یا ٹائم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 ایپ بھی اب آ گئے ہیں یہاں پر، جیسے ڈاکٹر ایپ ہے اور ہے KRY ایپ ہے، یعنی یہ ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ڈائریکٹ یعنی آن لائن اپنے ایپ کے تھرو ویڈیو کال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ڈاکٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ مطلب ہے اس سے بالکل مدد لے سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا یہ ہو گیا کہ ہر وقت یعنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیکنیک جو ہے کمیونیکیشن ہے، یہ بہت زیادہ آج کل عام ہو گئی ہے۔ جی
1: کامران، اس کے علاوہ جو آپ سنایا کہ سویڈن میں جو کرونا وائرس کی جو ریشو ہے وہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
2: ہاں جی بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریشو مطلب ہے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، جو بہت اچھی یعنی ایک کارآمد ہے۔ شروع شروع میں آپ کو بتایا کیونکہ اس کی وجہ 2-3 اور بھی آئی ہیں، جو میں نے جو تھوڑا سا میڈیا کو سویڈش میڈیا کو فالو کیا، وہ 2-3 بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ خود مطلب پہلے اتنے لوگوں کو، اور دوسری بات ہے لوگوں کو نالج انفارمیشن بھی نہیں تھی، تو یہ لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے، اور لوگ اس کو سیریس لینا شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کو پتا ہے کوئی نئی چیز جب آتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے، لوگ تھوڑے سے مطلب اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے، تو یہ جگہ جگہ آپ کو پتا ہے کہ جب سوشل ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی قانون بن گیا کہ کوئی بھی یعنی شاپنگ مال ہو، کوئی یعنی پبلک ایریا ہو، تو وہاں پر ہمیشہ آپ کو بورڈ لگنا چاہیے کہ آپ ڈسٹینس کریں، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ جدھر بھی آپ جائیں تو کہ بھئی اب انہوں نے نا وہاں پر سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج کل جو میں نے جو ایک ڈفرینٹ بھی سویڈن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ابھی یہاں پر اگر آپ پبلک ٹوائلٹس یا پبلک جگہ پر آپ جاتے ہیں، تو وہاں پر آج کل وہ سینسر لگے ہوئے ہیں ٹونٹی کا، یعنی ہاتھ آپ کو وہ ٹونٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ آگے آپ کرتے ہیں تو وہ پانی آ جاتا ہے، तो डिफरेंट जगहों पे ये चीजें भी बहुत हो गई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बसों के अंदर इस वक्त स्पेशली मालमो में, और भी ऐसे ही होगा लेकिन मुझे मालमो का पता है, क्योंकि अब बसों के अंदर भी अब जैसे आप पहले आप टिकट लेते थे तो वो ड्राइविंग ड्राइविंग आपका ड्राइवर आपका टिकट देखता था और फिर आपको आने की इजाजत होती, तो अब आप उस डोर से भी नहीं आ सकते अब, लेकिन अब उन्होंने पीछे लगा दिए तो आप यानी जो पीछे वाला वहां से आप जा सकते हैं उसके अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यानी दो तीन चीजें हैं कि एक चीज ये भी हो गया कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उस भी थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पर वो तकरीबन ओवर 200 जो यानी ड्राइवर हैं वो भी जॉब से जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ना अवॉइड करना शुरू कर दिया है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये थोड़ी सी मतलब है एक नुकसान हो रहा है क्योंकि इतने लोग मतलब है पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उस बंदे को होगा आपको पता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है या थोड़ा दूर रहता है, उसने अपनी जॉब पे जाना है या अपना कोई चीजें खरीदने के लिए जाना है या कोई दोस्त के पास जाना है या कोई इस तरह, तो ये चीजें भी यानी थोड़ा सा मसला यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अब भी थोड़ी सी यानी हम आपको बता हम सोशल डेमोक्रेट से मेरा ताल्लुक है, हम हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि आप किसी को मतलब है जॉब ना दे। तो एक एक और हमारी पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आई है ये वाली कि आपको पता है कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी 2 अगस्त है आज, तो ये हो गया कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे जस्ट कोई 11 को स्कूल शुरू होने हैं या किसी ने यानी इसके वैसे ऐसा स्कूल शुरू होने, तो ये भी मतलब बातचीत हो रही है कि आप स्कूल को मिसाल के तौर पे उनका जो स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है ओपन जिस तरह जाना है तो दूसरे स्कूलों से यानी आप थोड़ा डिफरेंस कर लें ताकि बच्चे मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो ये तो सेकेंड जो स्कूल है उसके बच्चे तो आप उसको 8:30 कर दें, यानी बच्चों को भी आप टाइमिंग के थ्रू इसकी छुट्टी मिसाल के तौर पे किसी की छुट्टी 3 बजे होनी है किसी की 4 बजे होनी है तो अगले दिन जो दूसरा स्कूल है वो 9 बजे शुरू कर दे, यानी इस किस्म के यानी ये भी एक एक एक किस्म से एक आइडिया दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसके मतलब आप डिवाइड कर दें डिफरेंट टाइम से ताकि आपकी जो स्टूडेंट्स भी आए वो एकदम बसें ना भरें। अब आपको पता स्कूल में स्टूडेंट्स मतलब है डिफरेंट स्कूल जो आपको बताया उनको उनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीप होती है वो गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट यानी आइडियाज हैं यहाँ पर कि भाई किस तरह से हमें मतलब है क्या करना चाहिए कि भाई कि हम नहीं चाहते कि बस जो ड्राइवर हैं उनको भी मतलब है जॉबलेस ना हो और उनको भी रखा जाए लेकिन काम भी चलता जाए, तो अब इसके बारे में भी काम हो रहा है। जी
1: कामरान आपने बड़ा अच्छा किया तफसील से बताया। तो कामरान अब जो सियासी हालात चूंकि आप सियासत से भी आपका तल्लक है तो सियासी हालात जो है आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है नई चीजें या सियासी पार्टियां कोई तब्दीली लाना चाहती हैं या आपकी पार्टी कोई तब्दीली लाना चाहती है?
2: बहुत अच्छा आपका वो ये क्वेश्चन है। पहली बात आपको शुरू में जब आपको बताया कि जब यहाँ COVID-19 आया तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वीडन को मिला क्योंकि जो यहाँ की जो आपको पता है डिफरेंट जो अपोजिशन की पार्टीज होती हैं उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो वजीर आजम को चला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। फिर वो कंपेयर करते थे कि डेनमार्क ने लॉकडाउन कर दिया आपके डेनमार्क ने मतलब है नॉर्वे ने कर दिया फिनलैंड ने कर दिया फ्रांस में कर दिया यूके में हो गया इटली में हो गया स्पेन में यू गो ऑन अमेरिका तक में हो गया जर्मनी में मतलब ये आप अगर देखें फॉलो करें लेकिन वो कहते हैं कि देखें यहाँ कम हुआ यहाँ पर तो, लेकिन जो स्वीडन ने एक स्टेटस यानी जो जो कहा मतलब है कि आप देखें कि अगर हम वहां पर अगर बंद हुआ है मतलब है डिफरेंट जगहों पे तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मतलब है इस चीज को हमने लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि हमारे पास इतने मतलब है हॉस्पिटल हैं इतनी हमारे पास जगह है इतनी बेड है हमारे पास हमारे हॉस्पिटल्स हमारी आर्मी यानी डिफरेंट उन्होंने वो भी लगा दिए खैमे भी यहाँ लगे हैं टेंट्स भी लगे हैं तो हम इस चीज को कवर कर सकते हैं मतलब है ये हम मतलब है हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में 50 बंदों के बेड है क्रिटाइन उन्होंने बनाया हुआ है COVID-19 के 50 पेशेंट वो ले सकते हैं लेकिन वो वहां पर 50 नहीं आ रहे वहां पर 20 आ रहे हैं 30 आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, तो उनको अगर वो ये देखते कि मिसाल तौर पर 50 का बेड है लेकिन उनके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ गए, अगली दफा उनके पास 250 आ गए, फिर तो वो मतलब है उस चीज को लॉकडाउन करें क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया है सिस्टम सारा, फिर तो समझ भी आती है। तो इस वजह से स्वीडन ने मतलब है इस चीजों को भी किया है कि जो मेन जो, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो लॉकडाउन करते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे क्योंकि स्कूल भी लॉकडाउन उन्होंने किया, तो इस वजह से उन्होंने जो डे केयर है वो भी लॉकडाउन नहीं किया। तो जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, जो पैरामेडिकल के स्टाफ थे, जो मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चलाते हैं, जो टैक्सी वाले लोग थे, जो जो जो मिसाल के तौर पे जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी जिनकी मतलब है ये जो सिस्टम जो था, ये उन्होंने वो जॉब पे आ रहे थे बकायदा, सिस्टम मुल्क एक ना वो चल रहा था, मतलब हर चीज एक अपने सिस्टम में थी और बकायदा काम कर रही थी। तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि भाई ये भी मतलब है तरीके से हम करें, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो COVID-19 है ये बच्चों पे इतना ज्यादा, क्योंकि उनके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्टैटिस्टिक और इन्होंने अपने एनालाइज किए कि वो बच्चों पे इतना असरअंदाज नहीं हो रहा है कंपेयर टू जो हमारे सीनियर हैं। तो उन्होंने फिर वो उसकी वो बनाई कैटेगरी बनाई कि जो उन्होंने कह दिया कि जो आपके डे केयर हैं ये अपने आराम से स्कूल में जाएं, और जो आपके 9th तक हैं वो भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं ये थोड़े से यानी डिफरेंस होता है, वो घर में बैठ के ऑनलाइन उनकी क्लासेस होंगी। और फिर उन्होंने कहा जो मिसाल के तौर पे जो थोड़े से सीनियर हैं 60+ हैं, जो 70 हैं, यानी वो घर में रहें, और उनको बकायदा यहाँ तक भी दे दिया है कि वो सैनिटाइजर वगैरह वो बिल्कुल वो ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ये भी मसला मतलब है आगे। तो ये उन्होंने बकायदा एक हर चीज का एक सिस्टम तरीके से लेके गए हैं, और रोजाना आकर आपको बताया कि मिनिस्टर हो गए, और थिग्नेल आपको बता आजकल बड़ा मशहूर है जो स्वीडन का डॉक्टर है, जो वो आके मतलब है हर रोजाना आके मतलब है हमें वो करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि आज दिन में क्या हालात है, आज दिन में क्या हालात है। तो सबसे ज्यादा जो हालात जो है वो जो खराब है वो है स्टॉकहोल्म में। तो आज भी आपको मैं जरा मतलब आपको बताता जाऊं कि नॉर्वे में कि बंदे अगर मिसाल के तौर पे आप तो ये इसमें समर आ गया, तो नॉर्वे ने भी अभी तक स्वीडन को फुल मतलब है आप लोगों को नहीं, वो नॉर्वे ने भी स्वीडन वालों में कहा है कि सिर्फ स्कोने के लोग, यानी जो मालमो हो गया, लुंड, हेल्सिंबोरी, ये जो स्कोने के लोग हैं ये सिर्फ नॉर्वे जा सकते हैं, बाकी आप नहीं। इसी तरह स्वीडन डेनमार्क ने भी ऐसे ही किया कि स्टॉकहोल्म के लोग ना आए हमारी तरफ, नॉर्थ स्वीडन के लोग ना आए, यानी वो आए सिर्फ स्कोने के भी कुछ ले आ सकते हैं। फिर वो आ गया था कि एड्रेस कैसे पता लगेगा कि स्कोने में है या ये रहता है बंदा या ये स्टॉकहोल्म में रहता है या मालमो में रहता है, तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑफिस एक वो लेके आए, कागज लेके आए। लेकिन मुझे वैसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी डेनमार्क ने भी खोल दिया लेकिन अभी तक भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी मुझे है इंफॉर्मेशन जी।
1: तो कोई मालमो में कोई डेमोस्ट्रेशन भी हो रही है यहाँ जो है डेमोस्ट्रेशन कश्मीर के हवाले से, कोई मालमो भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है?
2: नहीं जी, हम इतने तो नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त को हमारे जनाब साजिद राजा साजिद साहब है जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और कश्मीरियों के लिए हमेशा उनके हक में बात करते हैं, और माशाल्लाह बड़े मैंने उनको मतलब है वो हमेशा, और वो उनकी बहुत अच्छी एक चीज मैंने उनको देखा कि वो हमें भी साथ मिलाते हैं, मतलब है वो हमें मालमो वालों को स्पेशली जो पाकिस्तानी है उनको भी कहते हैं कि आप भी आए, और हम और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंडियन अम्बेसी के सामने 15 अगस्त को जब उनकी एक इंडिपेंडेंस डे होती है और वो वहां पर जाके उनके सामने एक स्पीच करना, लोगों को जमा करना, एक इनिशिएटिव बनाना और बकायदा वहां पर मतलब है एक प्रोटेस्ट करना, और ये और वो आपको पता है मीडिया में आता है, वहाँ डेनिश मीडिया आपकी इसको वो कवर करती है, न्यूज आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आती है, और स्पेशली जो हमारे यूथ हैं यहाँ पर जो डेनिश पाकिस्तानी है, स्वीडिश पाकिस्तानी है, जो बच्चे हैं उनको भी वो वो होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है, ये चीज उनके वो यानी जबरदस्त मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब राजा राजा साजिद साहब को कि उनकी यानी बहुत बड़ी एफर्ट है ये वाली। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू अब ह्यूमैनिटी का इशू हो गया, ये अभी कोई इसमें ये नहीं हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अगर आप कंपेयर करें ना इस इशू को फलस्तीन के इशू से, तो ये कश्मीर का इशू फलस्तीन इशू से बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आ जाता है कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है, वहां रिलीजन का वो है हमारे लिए, बिल्कुल वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में आप देखें एक ज्यादा फलस्तीनी इतने नहीं है, तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जी, वो वहां पर उन्होंने डबल लॉकडाउन किया हुआ है। एक तो लॉकडाउन उन्होंने 5 अगस्त को किया था 2019 में, और दूसरा लॉकडाउन ये कोविड-19 की वजह से उनको वो मिल गया। और रोजाना हम टीवी पे देखते हैं कि कितने जो बेचारे हमारे नौजवान हैं, कभी कोई टीचर वहां से उठता है फ्रीडम फाइटर, कोई बेचारा कोई वहां पर कोई कोई यानी स्टूडेंट्स उठता है, कोई मतलब है ये यूथ उठ रही है वहां पर, और वो क्या करते हैं वो बेचारों उनको शहीद भी कर देते हैं और फिर उनकी लाश उन्हें वापस भी नहीं करते। मैं रिसेंटली जब एक बहुत बड़ी एक पिक्चर कश्मीर से आई थी, जब इस बेचारे के नाना को शहीद किया गया, और वो उस बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसे गोली लगी, उसके पेट पे वो बेचारा बैठ जाता है क्योंकि वो बच्चा अपने आप को महसूस यही करता है कि नाना के साथ मैं रहूं, और वो तस्वीर उतरती है। और फिर बाद में एक और हमने सोशल मीडिया पे देखी कि इंडिया वाले फौज उसकी उसके पेट पे पैर रखकर और वो बात कर, कितनी बड़ी एक इंसानियत है। मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी आप जानवर को इस तरह मतलब है बाहर निकल के आप उसको इस तरह करें जगह पर, मैं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, वो तो फिर भी इंसान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम भी यहाँ से बहुत से मतलब है शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी इंशाल्लाह कि जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली और साथ अपने लोकल भी लाएं, यानी अगर डेनिश है वो भी साथ लाएं, और अगर स्वीडिश है या कोई भी हो यानी वो भी साथ लाएं और डेमोन्स्ट्रेशन करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 15 अगस्त 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पर बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी वो कराएं, और जो है राजा साजिद साहब उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे बिल्कुल मालमो पाकिस्तानी हम उनके बिल्कुल भरपूर उनके साथ हैं जी।
1: कमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा
2: इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया।
1: समान ये थे कामरान कुरैशी जो कि मालमो स्वीडन की फ़जाओं से बात कर रहे थे। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े काबिल हैं, ये ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी हैं जो कोर्ट में बैठते भी हैं बाकायदगी से जो है। इसके अलावा अपना पेशे के लिहाज से वो इंजीनियर हैं, गैस में काम करते हैं, बड़ा अच्छा है इनका सोशल वर्क भी, बड़ी हिम्मत है इनकी कि इतना टाइम ये निकालते हैं अपनी कम्यूनिटी के लिए, सोशल कामों के लिए। तो यही जज्बा होना चाहिए कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी, और बाकी भी जो है अपने काम करने चाहिए। समझने हमारे साथ साथ रही अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामने इस वक्त चौधरी शौकत साहब जो के काफ लीग के सदर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद।
2: जी बहुत मेहरबानी रहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक चौधरी साहब, पहले सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं तो अब इंशाल्लाह जो है ना पूरी तरह सेहतयाब हो गया हूँ। आपको पता ही है, आपके साथ भी था 2-3 दिन पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है दोस्तों की, बहन भाइयों की दुआओं से, तो अल्लाह पाक का बहुत करम है।
1: चौधरी साहब आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई अपना, जिन लोगों ने इस तरह के इस प्रोसेस से गुजरे हैं जिनका ऑपरेशन हुआ, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप?
2: हाँ बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले एहतियात सबसे बहुत जरूरी है। आप अपना फासला पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा ना जाया करे, कम जाया करे, और जाए भी तो अपना मास्क वगैरह ये इस्तेमाल करें और जो अपना फासला रखें। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो आपको पता है कि ज्यादा कोई पता नहीं होता कि इस भाई को कुछ ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि बीमारी लाग है या नहीं है या जो हो सकती है, तो आप अपनी एहतियात बहुत जरूरी है। जो खासकर बुजुर्ग लोग जो है जिनको ये शक है या कमजोर है या हो सकता है या हो सकती है, या जिनको जैसे मुझे मेरी तरह ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, तो एहतियात करें। सबसे बहुत जरूरी है कि एहतियात, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फासला रखें और मिलना जुलना बहुत कम रखें।
1: ये बड़ी अच्छी बात की जो सब, चूंकि आप सियासतदान भी हैं तो एक आध बात सियासत पर भी कर लेते हैं। जो सब आप एक अपोजिशन जमात में पहले थे, उसके बाद आप हुकूमत में गए और अब फिर आप अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, क्या बात है? ये हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही?
2: राय साहब जहाँ तक मेरी पार्टी का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। जैसे कि हमारे लीडरान ने भी हमेशा कहा है कि हम इनका पूरा साथ देंगे, 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कि काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तो वो उनकी निशानदेही करना फर्ज बनता है उस पार्टी का, जो उन पे फर्ज भी हो जाता है कि वो हुकूमत को बावर करवाएं कि ये मामला जो है ना गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको इस तरीके से आप जो है ना लेके जाएं। तो ये कुछ कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासर होते हैं जो कि इसका तजिया किसी और तरीके से करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, इंशाल्लाह अभी तक वो जो है ना हम उनके इत्तेहादी हैं और उनका ही साथ देंगे। तो खुद कैसी गलतियां होती हैं, ऐसी जो कोई पॉलिसियां होती है जिनको जिनकी निशानदेही करनी बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी के लिए भी, जैसे बेशक वो तादी हो जो भी हो, तो उनका बनता है कि जैसे मजहब के इस्लाम के लिहाज से काफी चीजें जो है ना चौधरी परवेज लाई साहब ने निशानदेही की जो है ना वो उनको उजागर किया, तो ये फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कहें कि ये मामला जो है ना इस तरीके से जा रहे हैं जो कि कम्युनिटी के मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें उनको हल करना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देनी चाहिए, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं और साथ उनका देंगे।
1: लेकिन आप एक तरफ साथ भी हैं तो दूसरी तरफ आप पर जो आपकी हुकूमत चौधरी बरादरान पर जो नायब के जो 20-25 साल पुराने मुकदमात थे दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो आप खाली सियासी बयान होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं है हुकूमत के?
2: नैब के केस जो राज साहब आपको पता है ये तो अभी तो नहीं है, ये तो पहले के है ना, तो पहले को कितनी दफा हमें क्लियर किया, हमारी पार्टी को नैब ने क्लियर किया, क्लियर चिट भी दे दी साफ, उनका कोई एलिगेशन भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा ये हो गए। तो ये तो नैब को चाहिए कि अगर जब कुछ केस क्लियर हो जाते हैं तो उनको दोबारा फिर वो अंडर प्रेशर पार्टी को लाना, लोगों को लाना, तो ये तो कोई नामनासिब बात है ना। तो जो अगर नैब के केस है तो इंशाल्लाह हम उनकी फाइट करेंगे, पहले भी हम फाइट की थी, हम इंशाल्लाह हम अब भी फाइट करेंगे, हम अपने मसाइल जो है ना उनको हम जो हमारे केस है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साफ है, क्लियर है हमारे केस, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, दारों का एहतराम किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे।
1: लेकिन जो सब बंदा हुकूमत में होता है तो फिर हुकूमत में ही रहना चाहिए, या कितने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गया कि हुकूमत के रहते हुए अंदर भी तनकीद कर सकता है बंदा?
2: बिल्कुल राय साहब, ये तो हक इंसान का ना, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी है उनका ये हक बनता है, चाहे वो आतादी हो चाहे वो अपोजिशन हो जो भी हो, तो जो भी कोई गलत समझती है पार्टी के ये गलत है तो उसकी निशानदेही करना पार्टी का फर्ज बन जाता है, जो कि वो अपने नजरिए के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि ये जो मामलात है ये हमारे नजरिए के मुताबिक गलत है, तो चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो तो उसके निशानदेही करना फर्ज बनता है। तो वो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज रही साहब हमेशा अच्छे तरीके से, जो शुजा साहब अच्छे तरीके से वो जो है ना उजागर करते हैं उन मसलों को उन मसाइल को।
1: जो सब क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग काफ की ये एक ही अंदर जम होने जा रही है आपकी जमात, और ये मुआहदा हो चुका है कि वजीर आला जो पंजाब होंगे अगर केयर टेकर हुकूमत बनती है तो वजीर आला या तब्दीलियां हाउस तब्दीली होती है बुजदार साहब जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब होंगे, आपको कोई अंदर की खबर दें आज?
2: राज साहब जहाँ तक अंदर की बात है वो तो मैं गायब का इलम तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि इतना काबिल परवेज लाई साहब जो इतने काबिल इंसान है उन्होंने अपना वर्क पंजाब में करके दिखाया था अवाम को रिलीफ दी थी, पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मसाइल असल मसाइल थे उनको उन्होंने उन पे काम किया था, तो उनका नाम आज तक परवेज लाई साहब का पंजाब में ये नाम आता है कि उनका रिकॉर्ड जो है ना हिस्ट्री में है। तो ये चौधरी परवेज लाई साहब को तो सब ही इत्माद करते हैं, तो लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी उनके साथ कुछ मेरे इलम के मुताबिक तो कोई ऐसा अभी कोई लाए जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ ना एक मुआहदा हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है। तो अगर नून वाले चौधरी परवेज लाई साहब पे आप इत्माद करते हैं तो वो समझते हैं कि परवेज लाई साहब उनमें ऐसी काबिलियत है इसके काबिल है तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो समझते हैं। तो वक्त आने वाला वक्त तो वो उसी वक्त बात कर सकता है जब वो आएगा, फिर देखेंगे क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट के साथ हम तादी हैं।
1: तो सब एक हमारा यहाँ अकलौता मेंबर है पार्लियामेंट का मलिक सिकंदर सिद्दीक, और उसके बाद जो है जो हमें खबरें मिल रही हैं डेफिनेट आपके पास भी खबरें होंगी कि अगली दफा बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो अब कम्यून की तरफ लोग लगता है कि ज्यादा तोजो नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनने की तरफ ज्यादा तोजो दे रहे हैं, आप क्या सियासी तजिया आपका क्या है?
2: राय साहब आपने कहा कि ये ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, असल में तो हमारे मसाइल पड़े हुए हैं कम्यून लेवल पे, हमारे बच्चों के हमारे जो मामलात है वो उधर से ही जो है ना हमने उनको हल करना है, जो के बच्चे हमारे आजकल जो के स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे आगे आ रहे हैं तो उनमें ज्यादा हमें कमून की तरफ ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बंदे हमें कमून में लाने चाहिए, हमारे काउंसलर हमारे जो भी ये लोग हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ये शऊर पैदा करना है हमने लोगों में कि ये कमून के इलेक्शनों में हिस्सा ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पार्लियामेंट तो जाके कानून बनता है, जब कानून में मेजॉरिटी होगी तो उधर वो भी होगा, तो हमें पार्लियामेंट में भी हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादा ज्यादा लोग जितने ज्यादा कानून में होंगे हमारे जितनी ज्यादा नुमाइंदगी पार्लियामेंट में भी होगी, ये पाकिस्तानी जो हमारे जो मसाइल है वो ज्यादा ज्यादा होंगे तो ज्यादा तरीके से मुतहद हो के जो है ना वो हमारे मसाइल हल करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो किरदार अदा करना चाहिए कानून में भी और पार्लियामेंट में भी, ऐसे ही जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लोग हमें खुशी होगी।
1: चले आपने बड़ा दिलचस्प बात की और आपने बड़ा अच्छा बात की कि कम्यून में हमारे मसाइल पड़े हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी अच्छी तरफ आपने तो जो मबजूल कराई है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया
2: जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया राय साहब,
1: इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह जी। सामाइन ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की हुकूमती लेवल पर, जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो अपोजिशन में नहीं है लेकिन साथ ये भी मान गए कि अपोजिशन में, और ये भी मान गए कि हम जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत के साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है और इसी तरह होना चाहिए, और जो है हुकूमत में रहते हुए भी अगर कोई बंदा तनकीद करता है तो उसको दाद देनी चाहिए, आज के दौर में अगर पाकिस्तान में कोई तनकीद करता है तो।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया था, वो अंदर से ही पैदा किया गया था, अंदर से ही वो दिया गया था। आज सूरत हाल ये है, आज वही लोग जो बयानियां खड़ खड़ के इस सिलेक्टेड सेटअप के खिलाफ जो मुखालफीन थे, जो मौजूदा उस वक्त की मौजूदा हुकूमत थी उसके खिलाफ गढ़ते थे, आज वही सेट माइंड के लोग, वही मास्टर माइंड बयानियां खड़ खड़ के हमें पेश करते हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोलो इस तरीके से। हमारे कायदीन को बुला बुला के कहा जाता है कि आप इस तरीके से करो, हम आपके साथ इस तरीके से चलते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये इंटरनल जो मामलात हैं जो दिन ब दिन जो गिरते जा रहे हैं, मोईशत की तबाही किसी भी मुल्क का सबसे अहम जो ना एक मसला है, सबसे अहम सबसे बड़ी तबाही एक मोईशत की तबाही है। जब आपके मुल्क की मोईशत तबाह हो गई, आपकी अवाम को भूख और नंग का जो सामना करना पड़ गया, तो भूख एक ऐसी चीज है कि भूख के सामने तो दज्जाल को खुदा मानना पड़ेगा आपको। भूख तो एक ऐसी चीज है कि जो ईमान को मतदल कर देती है, जो आपके आपके आपके कलमे को तब्दील करवा देती है। जो माँ या बाप अपने बच्चे को भूख की हालत में देखती है, अपने घर के अंदर देखती है कि रिजक आना बंद हो गया है, तो वो तड़प तड़प के बाहर निकलते हैं कि कोई ऐसा हल निकाले, कुछ भी हो वो हल, उसको अडॉप्ट करें, अपने बच्चों को भूख से बचाए, अपने घर में किस तरीके से आमदनी आए। आज हमारे पाकिस्तान की मईशत माइनस की तरफ, यार ये इंतहा है कि एक वो मुल्क जिसको आज से सिर्फ 2 साल पहले ये कहा जा रहा था कि ये एशियन टाइगर बनने जा रहा है, और एशियन टाइगर बनने की बात खुदा ताला माफ करे हम में से हम लोग नहीं करते थे, इंटरनेशनल बैनल्कवामी जो इकोनॉमिक फोरम थे वो कहते थे, हमारे मुखालफ मुल्क जो थे वो कहते थे, इंटरनेशनल यूरोप से अमेरिका के थिंक टैंक कहते थे, ये हमारा बर्तानिया के थिंक टैंक कहते थे कि ये विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान ने फिर दोबारा अपने आप को रिवाइव किया है, फिर दोबारा खड़ा होकर अपने कदमों पे दिखाया है। ये अपनी मोईशत को कहां से कहां ले गए हैं, इनका इनका इनकी नौजवान नस्ल के अंदर बहुत एक पोटेंशियल है, और ये आने वाले चंद सालों के अंदर ये बेशुमार क्या कहते हैं कामयाबियां हासिल करेगा ये मुल्क। लेकिन अचानक सिर्फ 2 साल पहले पूरा जो है वो तलपट कर दिया गया, तख्ता उलट दिया गया इस मोईशत का, इस कामयाबी का, इस सुनहरे दौर का, और सिर्फ दो सालों के अंदर आप देख लीजिए कि वो मुल्क जहां महीने में 4 या 5 बैनल्कवामी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट थे उनका इफ्तिताह हो रहा था, और सिर्फ एक किसी एक सूबे के अंदर नहीं, मुल्क के चप्पे चप्पे में वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तक, पहाड़ों के अंदर से टनलें गुजार गुजार के उनके कनेक्शन पता नहीं कहाँ कहाँ मिला दिए गए, मोटरवेज का जाल इस कदर तेजी से बिछा दिया गया कि छोटे शहरों को बड़े शहरों के साथ जोड़ दिया गया, तजारत को इतना आसान करने के जो जितने भी थे वो स्टेप उठाए गए, और मईशत दिन ब दिन बढ़ रही थी, पर कैपिटा इनकम दिन ब दिन बढ़ रही थी, ताजर और नौजवान खुशहाल से खुशहाल होता जा रहा था, नौजवानों के अंदर एक वो जो म्यारी जिंदगी बढ़ने की वजह से अपॉर्चुनिटी जो बढ़ रही थी, जो नौकरियां जो इजाफा हो रहा था, और नौकरियां भी अच्छी सैलरी के साथ बढ़ रही थी। आप देखिए कि उस वक्त हर डिपार्टमेंट के अंदर हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद बजट के ऊपर तनख्वाहें बढ़ाने की जो खुशखबरियां आया करती थी, आज पूरे का पूरा सेटअप आपका माइनस में चला गया है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, आपका जो तनख्वाहें बढ़ाने का सिलसिला है वो रुक गया है, सो मच सो जो पेंशन है वो आप खत्म करने जा रहे हैं। हमारे उस दौर को आज से सिर्फ 2 साल पहले अगर आप निगाहें दोहराएं तो आपके सुनने वालों के यकीनन उनकी आंखें भी रोएंगी, उनका दिल भी रोएगा। तो मेरे आपके जो सुनने वाले मोहतरम जो सामईन हैं वो लाजमी इसके ऊपर इसका बखूबी जायजा ले रहे होंगे कि आखिर ये अचानक 2 सालों के अंदर इस कदर तबाही मची, तो मची कैसे। आप कश्मीर का हाल देख लीजिए, कश्मीर को किस तरीके से लिंगर ऑन करके, हाथों की जंजीर बना के, क्या क्या ड्रामे करके उस कश्मीर को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। और आप ये बात याद रखिएगा, मैं फिर बार बार जिक्र करता हूँ, और इंटरनेशनल हालातों वाकयात को मैं आप लोगों को मजबूर करता हूँ, राजा साहब आपकी मार्फत आपके सुनने वालों को, अपने वतन पाकिस्तान के जो मेरे हम वतन साथी हैं उनको मैं सोचने में मजबूर करता हूँ कि बराह करम
सिर्फ आवे यावे और जावे जावे के नारे मत लगाया करें, सिर्फ एक पार्टी की मुखालफत दूसरे पार्टी की हमायत मत किया करें। इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर क्या हालात वाकया चेंज हो रहे हैं, मुस्लिम उम्मा के साथ क्या क्या

0: ज्यादतियां हो रही हैं, मुस्लिम उम्मा को दोबारा सरवाइव करने के लिए, दोबारा फिर खड़े होने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ रहे हैं, और उन इकदाम को कामयाब करने के लिए हमें बहसीयत मुस्लिम उम्मा के, मुसलमान के, मुस्लिम कंट्री की आवाम के, हमें अपना क्या करदार अदा करना है, हमने अपने मुंह से क्या अल्फाज निकालने हैं, हमें क्या बयानिया जो है वो उसको दुनिया को बना के दिखाना है। तो खुदा का वास्ता है इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ साथ चंद और मुस्लिम ममालिक का जो जो जो बुरा हाल कर दिया गया है, आप देखिए हमारे कश्मीर के मामले के अंदर किस किस जगह से, किस किस मुल्क से एक मिलता जुलता जो ना वो तासर दिया गया, मिलता जुलता बयानिया जो दिया गया, मिलता जुलता रवैया दिया गया, और खुदा ताला माफ करे हम लोगों को कि हम तकसीम दर तकसीम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ, उम्मत के साथ, दीन मजहब इस्लाम के साथ, हमारे पाकिस्तान की सरजमीन, हमारे पाकिस्तान खुद, हमारे पाकिस्तानियों के साथ, और फिर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, कि भाई हम मेरे जैसे लोग जो थे वो ये हर वक्त ये नारा लगाया करते थे कि पाकिस्तान हमारी रग रग में, कश्मीर हमारी शाहरग है। आज 1 साल 365 दिन हो गए हैं, आपके उन कश्मीरी बहन भाइयों का कोई नाम लेने वाला नहीं है, और आज ही सुबह जब मैं उठा हूं, आज ही सुबह मुझे खबर एक पढ़ने को मिली और मैं खून के आंसू में रोया हूं। मैंने आज सुबह अपने फेसबुक पे ये लिखा है, मेरा पढ़ लीजिए आप, कि आज बरतानिया जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जहां हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कश्मीर के बहन भाइयों की मदद करने के लिए कि ये मुल्क हमारा साथ देगा, ह्यूमन राइट्स वाले हमारा साथ देंगे, तो बरतानिया की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट छपी है उसके अंदर लीबिया का, सूडान का, उर्दन का, मिस्र का और दूसरे बेशुमार मुल्कों के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का जिक्र खैर है, लेकिन कश्मीर का बिल्कुल सिरे से नहीं है। आपके लिए ये क्या
1: शाकर
0: भूख
1: साहब,
0: के
1: मैं
0: शर्म
1: आपकी
0: से
1: शाकर साहब आप खबर दे रहे हैं कि कश्मीर का बिल्कुल जिक्र नहीं है, लेकिन अभी जो 1 साल मुकम्मल होने को है तो तैयारियां हो रही हैं कि 5 तारीख को जो है वो 1 मिनट की खामोशी भी की जाएगी और सारी दुनिया में जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी। और दूसरी तरफ जो वाकया पेशावर में वाकया हुआ, एक कादियानी को मार दिया गया, कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो स्टेट का कानून है स्टेट के कानून पर ही अमल दरामद होना चाहिए, स्टेट ने ही फैसला करना होता है। लेकिन कहीं ये बात तो नहीं, आपने कुलभूषण का जिक्र किया, कहीं ये बात नहीं है कि उसको अपील का हक अगर दिया गया है किसी तरीके से, या आपने एक खबर लगाई थी और या अखबारात की जीनत भी ये खबर बनी, इस वाकये को जब ये वाकया हुआ कहीं ये तो नहीं होगा कि आप उसको मार जल्दी जल्दी इसको निकाल दिया जाए, जान छुड़ाई जाए, एक प्री प्लान जो कोई मामला हुआ, इस तरह की कोई चीज तो नहीं है?
0: देखिए राय साहब, ये सारी सारी चीजें जो हैं, अगर अगर आप गौर करें तो आप मेरी इस बात को ही सेकंड कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो के जो बर्डन है, जो प्रेशर है, तो हमारे जैसे मुल्कों की हुकूमतों को बर्दाश्त करने मुश्किल हो जाते हैं, मुश्किल हुए पड़े हैं। आपको वो वाकया याद नहीं जब हमारे घर के अंदर घुस के मारने की बात की गई, जब हमारे अंदर घर के घुस के अंदर इंडिया के टीवी चैनल के एक एक बंदे ने, एक एक चैनल ने हमारे बारे में क्या कुछ बताया कि 350 बंदे मार दिए गए हैं, और वो सारे के सारे सबको 350 350 को दहशतगर्द कहा गया, ठीक है। और फिर उसी उसी उसी उसी उसी सिनेरियो के अंदर जब उनके त्यारे मार गिराए गए, तो उस त्यारे मार गिराने के बाद उसका जो उनका जो जो पकड़ा गया था पायलट, किस कदर मुलायम तरीके से मक्खन में से बाल निकाल के प्लेट में कर रख के, इज्जत वकार के साथ, कपड़े भी हमने उसको खुद पहनाए, टाई भी हमने उसको खुद लगाई, चाय भी हमने उसको खुद पिलाई, उसकी उसकी ग्रूमिंग भी की, उसकी शेव भी कटिंग की, उसके मूछे भी हमने ताव लगा के, देसी देसी घी के साथ ताव लगा के उसको बॉर्डर तक छोड़ के आए, और बड़े बावकार तरीके से, बड़े फखरी अंदाज में छोड़ के आए, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने तकरीर भी की कि जी हम गुड जेस्चर के लिए कर रहे हैं। भाई गुड जेस्चर किस चीज का गुड जेस्चर आप कर रहे हैं? ये तो वो मौके होते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे किसी शख्स को जो पकड़ा जाता है, जो जो स्पाई होता है कुलभूषण जैसा, उसको पकड़ के दिखाया जाता है और बहुत अरसे तक दिखाया जाता है। आज जिस वाकये की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं अपने सुनने वालों की, वो इस वक्त एक अलमिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, वो ऑर्डिनेंस की सूरत में बिल पेश हो रहे हैं। उस शख्स ने जिसका नाम कुलभूषण है, और मैं उसका खुदा की कसम आज तक अपने मुंह के ऊपर उसका नाम नहीं लेके आता था कि मैं अपने वतन अजीज के, अपने सरजमीन के दुश्मन का नाम अपने मुंह पे क्यों लूं, और वो आपके आपके रेडियो के जरिए, किसी टीवी चैनल के जरिए, किसी अखबार के जरिए वो शोहरत हासिल क्यों करे? इन लोगों ने, इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उन लोगों ने इस मजदूर शख्स का नाम ले लेकर इस तरीके से उसको
1: कश्मीर की बात करते हैं। अब जो डेमोस्ट्रेशन हो रही है, क्या बरतानिया में इतने ज्यादा कश्मीरी आबाद हैं? किस तरह की जो आपके पास क्या मालूमात हैं? ये जो 5 तारीख को तो ये सरकारी सतह पर जो 1 मिनट की खामोशी भी की जाएगी और लोग जो है वो डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे, या डेनमार्क में भी इंडियन एम्बेसी के सामने 5 तारीख को भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है और कश्मीर सोसाइटी वाले 15 अगस्त को इंडियन की आजादी वाले दिन 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने जब उनका झंडा चढ़ रहा हो उस वक्त डेमोस्ट्रेशन करेंगे, आप क्या कहेंगे?
0: आप झंडा उतरते वक्त, झंडा चढ़ते वक्त एम्बेसी के सामने कर लो, आप एहतजाज कर लो, चांद चांद के फंडेड लोगों को 3-पीस सूट पहनवा के अपने ग्रूमिंग करवा के क्या कहते हैं ले जाके मिनते तरले करके बसें हायर करके कहीं ले जाके खड़ा कर दो, तो क्या फायदा क्या है इसका? वो जनाबे अली, ये हाथों की जंजीर बना लो, एक मिनट की खामोशी कर लो, क्या वो मेरी बहनें, आपकी बहनें, भाई और मुझसे ज्यादा जो कश्मीरी, जो मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले हैं, आपके आपके मुल्क में रहते हैं, मेरे मुल्क में रहते हैं और आपके सुनने वालों में ज्यादा तादाद उनकी है, क्या उनके माँ बाप बहन भाई जिस तकलीफ से इस वक्त गुजर रहे हैं, क्या वो एक मिनट की खामोशी से, हाथों की जंजीर बनाने से, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील करके, तबाह बर्बाद करके, और आज जो कश्मीर का जो मिनिस्टर बनाया गया है मेरे मुल्क में भी और यहाँ जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ इस मुल्क के अंदर भी, जिस जिस शख्स को कश्मीर का मामला कलमदान सौंपा गया है, क्या आप समझते हैं कि वो कश्मीर का मामला हल करने के लिए हमारे कश्मीर के साथियों का साथ देगा? वो कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म और सितम का साथ देगा? 5 अगस्त को जिस चीज की तरफ आप, उस काले कानून की तरफ आप, जो हमारी शाहरख को काट के परे फेंक दिया गया, किसी की जरूरत हुई उसके बारे में बोलने के लिए? हाँ जी, वो तकसीम दर तकसीम लोग जो फंडेड अपने अपने सियासतदानों को, जो कश्मीर से आते हैं, मकबूजा कश्मीर से आते हैं, आजाद कश्मीर से आते हैं या पाकिस्तान से आ जाते हैं, वो फंडेड लोग जो पिछले साल अपना फंड लेके आते हैं, जिनको यहाँ फंड के जरिए ही यहाँ वेलकम किया जाता है, जिनको सूटेड बूटेड पहने हुए लोग खाने खाने के चक्कर में, वेलकम के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में, टीवी के अंदर या अखबार के अंदर सिर्फ फोटो और खबर छपाने के चक्कर में जो लोग निकल के बाहर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और गायब होते वक्त एक दूसरे की माँ बहन की गाली भी निकालते हैं, पाकिस्तान को भी गाली निकालते हैं। ये ऐसे तकसीम दर तकसीम लोग हैं जिन्होंने तबाही मचा दी है, और उस शख्स ने, उस मुल्क ने, उस दुश्मन ने, उसने वो हर काम करके दिखा दिया जो वो करना चाहता था। आज भी 5 अगस्त वाले दिन वो आग पे सीने के ऊपर चढ़ के मूंग की दाल दलेगा। मैं अभी आपको बात बता रहा हूं, वो 5 अगस्त को और बड़े कुछ बड़े फैसले भी हो सकता है अनाउंस कर दें। वो आज इस वक्त हमारा ईद के जो दिन चल रहे हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, बाबरी मस्जिद की वो क्या कहते हैं वो ईंट रखने जा रहे हैं, वहां चांदी की ईंटों से रख के उसका उसका उसको दोबारा उसको शुरू किया जाएगा और वहां मोती फिर तकरीर करेगा 5 अगस्त का दिन, इसी तारीखी दिन को हवाला बना के वो आपको आपको ताने मारेगा वहां खड़े होके। और आप सुनना, आप एक मिनट की खामोशी करके सुनना, आप किसी ना किसी मुल्क के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के सामने, इंडियन सॉरी हाई कमीशन के सामने खड़े होके आए होए कुत्ता कुत्ता कर लेना आप, और उस दिन संडे का दिन होगा। आप इस कदर बेवकूफ लोग हैं कि जब यूरोप के अंदर संडे का दिन होता है, एम्बेसी बंद होती है, बिल्डिंग बंद होती है, बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा भी नहीं होता है, आपकी जो जो पटिशन होती है, जो आप पटिशन देने जाते हो उसको वसूल करने के लिए भी कोई बंदा दरवाजे पर नहीं आता है, लेकिन क्योंकि सेल्फी खींचनी है, क्योंकि रेडियो पे, अखबार में, टीवी पे खबर आनी है, क्योंकि मैंने जो 3-पीस सूट पहना है वो पहन के मैंने चंद लोगों को दिखाना है, क्योंकि मुझे 2 लफ्ज बोलने आते हैं, मैं खड़ा होकर तकरीर करूंगा, फिर उसकी वीडियो बना के मैं लोगों को भिजवाऊंगा। वहां जो 365 दिन से कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, सुना नहीं रहा। और सेम इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, नहीं दिखाया जा रहा, नहीं बोला जा रहा उसके ऊपर।
1: जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि मैं कश्मीर का जो है वो वकील बनूंगा, सऊदी अरेबिया के वाले को जो उनको भी कहा था कि आप भी जो है वो वकील बने, तो ये बहुत सारे वकील बने हुए हैं, तो डेफिनेट इस केस को तो लड़ेंगे, टाइम लगेगा। शाकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा बैन अल्कवानी सतह पर जारी मुख्तलिफ जंगों के बारे में मालूमात नजारात क्यों हैं?
0: देखिए, बैन अल्कवानी सतह पर इस वक्त जो अगर जो जो मामला जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर मुस्लिम दुनिया के हैं। अच्छा राय साहब, आपने जिस तरह इशारा किया तो आज लगता है मेरे इस मौकफ की आप तायीद करेंगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं बड़ी बड़ी। देखिए मैं एक दो फिक्रें सिर्फ ना पाकिस्तान का के बारे में जो आपने फिक्रा बोला और कश्मीर के बारे में बोलने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ आता हूँ। इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक कश्मीर आजादी कश्मीर के लिए जो जुस्तजू हो रही थी, तो जो मेहनत हो रही थी सामने भी और पसे पर्दा भी, सिर्फ उसको सेबोटाज करने के लिए उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान की हुकूमत करने के दौरान कश्मीर के मौकफ के बगैर बिल्कुल ठहरते ही नहीं थे, और उस वक्त जो के एक मजहबी रहनुमा मौलाना फजल रहमान जिसके हवाले कश्मीर किया गया था, नो डाउट गिले शिकवे उनके साथ भी बहुत है, मेरी भी मुखालफत उनके साथ है, लेकिन उन सबको नॉकडाउन करने के लिए, उन सबको सेबोटाज करने के लिए, उन तमाम सिलसिलों को बंद करने के लिए जो कश्मीर के कश्मीरी बहन भाइयों की मदद पहुंचाने के लिए सिलसिले चलते थे, उनको खत्म करने के बाद उन तमाम लोगों को जो कश्मीर के लिए जस्तदू में जद्दोजहद में जो हर वक्त जहाद में रहते थे, उन सब के सिलसिले बंद कर दिए गए, उनके रहनुमाओं को अंदर बंद कर दिया गया और सिर्फ कहा गया कि मैं कश्मीर का अम्बेसडर बनूंगा। ये तुम अम्बेसडर बने कि तुमने आते सारी गवर्नमेंट के आते सारी कश्मीर अमूर का जो वजारा जो किस शख्स को दी है, मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरी जुबान पलीत हो जाएगी। क्या कश्मीर अमूर को देखने के लिए, उसके लिए खड़ा होने के लिए, उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए वो शख्स मौजूद है? उससे 1,00,000 गुना बेहतर है वो मौलाना फजल रहमान, जिनके साथ हमारे सबके और कश्मीरी भाइयों के बहुत सारे गिले शिकवे होंगे, मेरे भी हैं, लेकिन 1,00,000 गुना बेहतर था वो शख्स, वो मौलाना जो इस वक्त जो बंदा खड़ा किया गया कश्मीर का अमूर को देखने के लिए, 1 लफ्ज नहीं बोलता वो कश्मीर के बारे में। 365 दिन हो गए हैं, आपने इस वजीर आजम का नाम लेके कश्मीर को, जिसने कहा था मैं अम्बेसडर बनूंगा, हमारे बैरून मुल्क जाने के बाद भी उसने बाकायदा तौर पर दहशत गर्दी को ऑन किया, जहाद को नहीं, दहशत गर्दी को ऑन किया, कश्मीर के खिलाफ किए गए सारे सिलसिलों को सेबोटाज किया। सर जी, आप इन चीजों को देख के मद्देनजर रखने के बावजूद भी अगर अपने मुल्क को मिल्लत के लिए, कौम के लिए, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए अगर कोई बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे तो आप दिन ब दिन और मजीद कमजोर होंगे। हमें दिन ब दिन यही इसी कमजोरी की तरफ लेके जाया गया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि हम हुकूमत को गरीब तर कर दो, अवाम को मजबूर तर कर दो। हमारा पाकिस्तान का खजाना जो भरा रहता था, भरा था और भरता जा रहा था डे बाई डे, उसको गरीब कर दिया गया, मंगता कर दिया गया, मंगता मांगते फिर रहे हैं, और देने वाले जो पहले प्यार से देते थे आप धुतकारते हैं, और अवाम जिनके पास पैसा तो है, जिनके पास वसाइल तो हैं, वो मजबूर कर दिए गए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। रबियाली, आपने जो इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की, मैं उसके ऊपर अपने ख्याल में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ आपके सुनने वालों के लिए। इस वक्त भी मैं जब आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, और मुझे याद है जब मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत हुई थी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जिस वक्त मैं पिछली दफा भी आपसे बातचीत कर रहा था तब भी, और आज भी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इस वक्त भी, दुनिया के मुख्तलिफ बड़े ममालिक जो कि ना सिर्फ इस्लामी हैं बल्कि जो मगरबी ममालिक हैं और जिसके अंदर चाइना भी शामिल हो चुका है, ये सारे के सारे इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हालत जंग में है। तुर्की इस वक्त हालत जंग में है, 3 डिफरेंट जो जगहों के ऊपर उसकी जंग जारी है, इराक के अंदर भी उसकी जंग जारी है, शाम के अंदर भी उसकी जंग जारी है, यमन के अंदर भी उसकी जंग जारी है, उधर में भी शुरू हो गई है। इस वक्त ईरान जो है वो हालत जंग में है इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, वो इस वक्त जंगी हालत में है इराक के साथ, ईरान और इराक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपको अगर याद नहीं है, अगर आपको जो लास्ट टाइम मैंने याद आपको कुछ मामला पेश किए थे, इस वक्त भी ईरान के अंदर 4 मुख्तलिफ अहम जगहों के ऊपर जो हमले किए गए, जिसके पीछे बयाना तौर पर मीडिया के दबे दबे अल्फाज में बताया गया कि इसके पीछे इसराइल और अमेरिकन साजिशें हैं, तो उसकी जवाबी कार्रवाई की गई, ईरान ने उसकी बाकायदा तौर पर जवाबी कार्रवाई की, ईरान ने अमेरिकन बहरी बेड़ा उड़ा दिया, ईरान ने अमेरिका के अंदर घुस के जाके तबाही मचाई, अमेरिका के अंदर इस वक्त बम धमाके फटे हैं, अमेरिका का स्टील मिल एक जो है वो तबाह किया गया है, एक गैस प्लांट तबाह किया गया है, एक रेलवे के अंदर रेलवे ट्रेन के अंदर एक धमाका किया गया है, वाटर प्लांट एक इसराइल का तबाह कर दिया गया है, अमेरिकन बहरी बेड़े को निचली परवाज पे जाके ईरान के मुबैना तौर पर तैयारों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान के हथियारों ने इराक के अंदर जाके फिर दोबारा अमेरिकन हाई कमीशन के ऊपर हमला किया है। अमेरिकन जो वहां ग्रीन जोन के अंदर अमेरिकन बेस है उसको तबाह किया है। अफगानिस्तान के अंदर धमाके किए गए हैं। तालिबान ने इस कदर वहां तबाही मचाई है, किसी कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। तुर्की जो है 10 किलोमीटर तक कुर्दों का इलाका फतह करता हुआ इराक के अंदर घुस चुका है, नहीं कोई बता रहा। तुर्की ने उर्दन के ऊपर हमला किया हुआ है, तुर्की ने शाम के अंदर घुस के उन ताकतों को सैबोटाज किया है जो कि दाइश को मदद वहां पहुंचा रहे थे, जो कि अमेरिका को मदद वहां पहुंचा रहे थे, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा। तैयब उर्दगवान तुर्की इस वक्त मुसलमानों का लीडर बन के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जंग कर रहा है, हालत जंग में है, कोई उसका नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने चाइना के साथ हाथ बढ़ाए हैं और उसमें चाइना की मेहरबानी है, चाइना ने आगे कदम बढ़ाए हैं। चाइना ने जहां जाके वहां ईरान के अंदर बैठ के जाके $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के MOU साइन कर लिए हैं। आज ईरान ने चाइना की बात मान के, आज तक वो बात कभी उसने पाकिस्तान की नहीं मानी थी, जो आज उसने चाइना की बात मान ली है। ईरान आज इराक के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज तुर्की के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है, ईरान आज सऊदी अरेबिया के साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के जो मशवरे थे आज उसके ऊपर अमल करने का वक्त आ गया है। चाइना ने इंडिया के साथ जब मामला खराब हुए, इंडिया के साथ जब जंग छिड़ी, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके उनके इलाके के अंदर घुस के कई किलोमीटर अंदर जाके उसके इलाके पे कब्जा कर लिया, इंडिया की दौड़ें लगी। इस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम तकरीबन हर प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब वक्त आएगा तो श्रीलंका भी उठेगा, जब वक्त आएगा तो मालदीप और नेपाल भी उठेगा। आज वो वक्त आ गया है। नेपाल ने बाकायदा तौर पर इंडिया के खिलाफ जो ना वो खड़ा होकर साबित कर दिया है। नेपाल की आवाम इस वक्त जो है बच्चा बच्चा इंडिया के खिलाफ हो रहा है। मालदीप ने उसके खिलाफ बयान दे दिए हैं, श्रीलंका उसके खिलाफ खड़ा है। चाइना सीधा उठ के गया है नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया ने के सदर ने और चाइना के सदर ने दोनों ने डिनर करने के दौरान ही, मुलाकात के दौरान ही ऐलान कर दिया नॉर्थ कोरिया की तोपें, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल इस वक्त इंडिया और अमेरिकन और इसराइल के जो जो बेस जहां जहां जिस जहां जहां जा वो टारगेट कर सकता है उसकी तरफ उसने उसी वक्त मीटिंग के दौरान ही उसने ऑर्डर किया कि ये सारे सारे रुख मोड़ दिए जाए। क्यों इस वक्त इन बातों को डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्यों हम लोगों को सांप सूंघ गया है, क्यों इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को सांप सूंघ गया है, क्यों इस वक्त ये बातें नहीं की जा रही, क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर क्या क्या क्या क्या क्या क्या रद्दबदल आ रही है, क्यों इस वक्त जो थर्ड वार्ड जो होनी है, जो थर्ड वार्ड के जो आसार है, जो सिम्टम है, वो ऑन ग्राउंड इस वक्त बाकायदा तौर पर हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं बाकायदा सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद के अंदर, जद्दा के नजदीक तक भी मिसाइल जो फेंके गए, क्यों उनका जिक्र नहीं किया गया, क्यों उसके बारे में मीडिया नहीं बोला। आपके सऊदी अरेबिया के मैं पिछले 4 प्रोग्राम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि सऊदीया के शाही खानदान का क्या बुरा हशर कर दिया गया है, उसके 50 शहजादों को क्यों मर्डर कर दिया गया, और अगर ये खबर गलत है तो वो 50 शहजादे बोलते क्यों नहीं है। शहजादा इस वक्त जो वलीहद है, शहजादा जो उसकी 2 महीने 2.5 महीने के बाद ये 3 दिन पहले उसकी खबर रिलीज की गई कि उसकी हालत नासाज है, तबीयत नासाज है, वो इस वक्त जेरे इलाज है। 2.5 महीने उसकी खबर क्यों नहीं निकले दी गई, और अगर वो जेरे इलाज था तो कहाँ जेरे इलाज था, अगर उसको बीमारी कोई है तो क्या बीमारी है। कतर टीवी ने और ईरान टीवी ने सऊदी वलीहद के मर्डर होने की खबर क्यों दी थी, ये सारी खबरें क्या राजा साहब को डेनमार्क में बैठे हुए राजा साहब के रेडियो के लिए सुनने वाले बेशुमार मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को क्या ये सुनाई नहीं देती, क्या उनकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, क्या वो डिग आउट नहीं कर सकते। तो जनाब यही वो जरूरी बात है जो आपको डिग आउट करनी है, जो आपको सुननी है, जो आपको निकालनी है। इन मालूमात को अगर आपके पास नहीं है तो आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को बुरा भला, इमरान खान के लिए सच्चे और झूठे नारे लगाते रहोगे, या वाइस वर्सा मैं ये करता रहूंगा। लेकिन ये वो जुल्म है जो हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ, हमारी नौजवान नस्ल के साथ कर दिया गया है। हमारे साथ ये जुल्म हमारी नौजवान नस्ल को तकसीम करके कर दिया गया है। हमारे साथ ये जुल्म हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को तकसीम करके कर दिया गया है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म शदीदा है। और हम हंसी खुशी बड़े ही मासूमाना तरीके से हंस हंस के उल्टे सीधे बयानियां बना के, उल्टे सीधे फेसबुक के सोशल मीडिया के पोस्टर बना के हम बड़े खुश हैं। ایک دوسرے کو گالی نکال کے، ایک دوسرے کو زچ کر کے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بول کے، یہ ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ اتنے مسلم دنیا کے ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اگلا ملک کس کی باری آ رہی ہے، یہ سازے اگلا ملک کس کی طرف جا رہی ہے. آج چائنا نے ترکی کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا، آج چائنا نے ایران کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا، آج چائنا نے بابانگے دہل کہہ دیا کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. آج اس وقت جو چائنا کوریڈور پاکستان سے جو نکلنا تھا اس کی جو ترقی کو، اس کے جو منصوبوں کو روک دیا گیا، آج بھی چائنا انہی منصوبوں کے اوپر دوبارہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو چلانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے. اس نے ابھی بھی بیان دیا ہے ہم ایک لفظ بھی اپنا تبدیل نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے ساتھ مدد کے لیے اپنے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ایک لفظ، ایک پروجیکٹ بھی ہم چینج نہیں کر رہے. لیکن آپ لوگوں کو دیکھنا یہ ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک وطن عزیز سرزمین، اس کے اندر موجود اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ اور اس موجودہ گورنمنٹ کو لانے والے وہ طاقتیں، وہ سورسز، وہ خلائی مخلوق جو کہ بین الاقوامی ہے، اور وہ فیکٹرز جو کہ ہمارے انٹرنل معاملات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قلم دان سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری انٹیلیجنسیا، ہماری آرم فورسز، کیا ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو کم از کم میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں، تو ہمیں فوری طور پہ ہمیں ریکنسائل کرنا ہے، ریکنسیڈر کرنا ہے، ہمیں ان غلط فیصلوں کو دوبارہ فوری طور پہ رد کر کے، کینسل کر کے، ختم کر کے، ہمیں پھر دوبارہ جو اصل صحیح پوزیٹیو فیصلے ہیں وہ دوبارہ کرنے ہیں. اور مسلم ورلڈ کے اندر جہاں جہاں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جہاں جہاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، طیب اردوغان کے دورہ پاکستان کے بارے میں آپ کے پچھلے ایک پروگرام میں بات کر چکا.
1: شاکر صاحب، یہ کرونا وائرس کا فیز 2 ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا ہے؟
0: جی میں بالکل کرونا وائرس کا آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس وقت کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے اینڈ پہ اس کا فیز 2 سٹارٹ ہونے والا ہے. جولائی کے اینڈ گزر گیا، یہ اگست کے 2-3 دن شروع ہو چکے ہیں، اور لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں، فیز 2 جو کرونا وائرس کا ہے وہ بڑی ہی شدت کے ساتھ، بڑی ہی شد و مد کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ایک دم آپ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. آج میں برطانیہ سے بیٹھا بول رہا ہوں، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کل، جبکہ جس دن عید کا دن تھا، کل اس نے دوبارہ پھر اناؤنسمنٹ کی ہے، ہمیں یہاں جو لاک ڈاؤن میں جو نرمیاں کی گئی تھیں وہ دوبارہ کینسل ہونے جا رہی ہیں. آج یہاں پھر گریٹر لندن کا جو میئر ہے وہ پھر دوبارہ پریشان ہے، ہمارے ٹریولنگ کے اوپر، ہمارے ملنے ملانے کے اوپر، ہمارے کاروباروں کے اندر پھر دوبارہ سے سختیاں شروع ہونے والی ہیں. پاکستان کے اندر ایک دم سے 2 دنوں کے اندر ایک دم سے پھر دوبارہ بوسٹ کر کے آیا ہے. انڈیا میں، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، یہ 7-8 وہ ملک ہیں جن کو انتہائی مزریبل دکھایا جائے گا. ان 7-8 ملکوں کے اندر انتہائی برے حالات کرونا کے پیدا کیے جائیں گے، پھر دوبارہ بے شمار موتیں واقع ہوں گی. 1.25 کروڑ کے لگ بھگ یہ آن دا ریکارڈ لے آئے ہیں کرونا پوزیٹیو لوگوں کو. انہوں نے انشاءاللہ آئندہ 2 یا 3 مہینوں میں اس فکر کو 2 کروڑ کرنا ہے. یہ میری بات آپ بھی اور آپ کے سننے والے بھی نوٹ کر لیں، یہ جو ان کا جو ایک سیٹ پلان ہے، وہ سیٹ پلان کے اندر 1 ملین لاشیں انہوں نے دکھانی ہیں کرونا کی، اور 2 کروڑ افیکٹڈ لوگ انہوں نے دکھانے ہیں کہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ جو اس وقت کرونا وائرس سے پوزیٹو ہو چکے لوگ ہیں. اور اسی کرونا پوزیٹو کے سیکنڈ فیز کے اندر بیہائنڈ دا سین، یہ جو میں جن جنگوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، جو سعودی عربیہ کے اندر ایران، ترکی، اردن، شام، یہ لیبیا، عراق، یہ افغانستان، اور پاکستان اور انڈیا کشمیر، یہ ان تمام علاقوں کے اندر یہ جو تھرڈ وارڈ کے آثار شروع ہو چکے ہیں جناب علی، اس سلسلے کے اندر بہت سارے بڑے ملک جو ہیں، بہت سارے بڑے ملک وہ امریکہ کے خلاف ہو چکے ہیں، شدید خلاف ہو چکے ہیں. امریکہ کے اندر اس وقت بم دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو چھپانے پڑ رہے ہیں. ان کا اپنا پریزیڈنٹ کا الیکشن اس وقت جو ہے وہ جیپرڈائز ہو چکا ہے، وہ کانسپریسی کا شکار ہو چکا ہے. انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے. اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ رشیا کے اندر بیٹھ کے سائبر کرائم کے ذریعے ان کے ہیر پھیر کر دیتا ہے ان کے الیکشنوں کے اندر. جی اس وقت امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. چائنا نے بگبانگے دہول کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. چائنا نے ہر اس ملک کا ساتھ دینے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ جو ان طاقتوں کو आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। जर्मनी ने मुखालफत कर दी है बाकायदा तौर पे। जर्मनी का इस वक्त टॉप के ऊपर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ, नहीं बता रहे हैं आपको ये लोग। ट्रंप का और मर्कल का इस वक्त आपस में चपकलश चल रही है शदीद किस्म की, और ये शदीद मुखालफत जो है ये यूरोप के सिर्फ एक मुल्क की नहीं है, सिर्फ जर्मनी की नहीं है, और जर्मनी नवाज जितने भी 2, 4 या 5 मुल्क हैं यूरोप के अंदर, वो सारे के सारे जर्मनी का साथ देंगे। आपको वाजे तौर पे मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ, आज फिर एक दफा दोहरा देता हूँ, रशिया इस सारे ब्लॉक की पूरी फुल सपोर्ट करेगा, वो कभी भी अमेरिकन ब्लॉक की इसराइल ब्लॉक की सपोर्ट नहीं करेगा। रशिया की और तुर्की के आपस में दोस्ताने शुरू हो चुके हैं, उनके बिहाइंड द सीन इस वक्त शेक हैंड होने शुरू हो गए हैं। रशिया के और तुर्की के जो आपस में मिसाइल थे जो कि वहां शाम की जंग की वजह से खड़े हो गए थे, वो इस वक्त हल हो रहे हैं। कतर जो है वो पॉजिटिव फुटिंग पे आ गया है। कुवैत जो है वो दोबारा शामिल होना चाह रहा है मुसलमान ब्लॉक के अंदर। तो ये सारे पहलू जो हैं, क्या हमें आंखें बंद करके सिर्फ एक दूसरे को कुत्तियां करके हमें जाया कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम पाकिस्तान इस वक्त कुर्रे अर्ज के ऊपर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो उम्मते मुसलमा है, और जो मुस्लिम ममालक के जो मुल्क है 51-52, उन मुल्कों के अंदर हम टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क हैं। तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया की, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की, और पाकिस्तान के एटॉमिक पावर की इस कदर उस शख्स ने, उस कौम ने तारीफ की है, हमें खुद अपनी तारीफ के बारे में पता नहीं है। तैयब उर्दगान ने आया सूफिया के अंदर जुमा पढ़ा, और उसके बाद जो उसने अनाउंसमेंट की है वो गौरतलब है, और उसको अगर हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा का हिस्सा नहीं समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते हैं, तो रद्द कर दो तुर्की को, रद्द कर दो तैयब उर्दगान को, रद्द कर दो खराफत राशिदा को, रद्द कर दो सल्तनत उस्मानिया को। और अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपका कुरान के ऊपर यकीन है, अगर आप अल्लाह को एक मानते हैं, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी नबी हैं, तो आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर वाजिब है कि आप खड़े हो जाएं, आपकी नियत जो ना वो बांध लें और मुंह तरफ किबला शरीफ कर लें, आपके किबला के खिलाफ, आपके मक्का और मदीना के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको पहचानिए, उनकी तरफ नजर उठाइए, उनके खिलाफ होने वाले फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाइए। तैयब उर्दगान पाकिस्तान का बार बार बार बार जिक्र क्यों करता है कि ये सारी दुनिया को पता है कि दुनिया के इस हिस्से में एशिया, जनाब अली आपके सुनने वालों को अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2 मिनट में आपको एशिया के अंदर, एक दुनिया के अंदर जो हमारी मुस्लिम उम्मा की जो तादाद है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 2 स्प्रिंग हैं, एक एशिया स्प्रिंग है, एक अरब स्प्रिंग है। अरब स्प्रिंग के सारे मुल्क इकट्ठे कर लो, सारे मुल्क इकट्ठे करके उसकी आबादी काउंट कर लो, तो इंडोनेशिया, मलेशिया या पाकिस्तान के बराबर बनती है। लेकिन जो एशिया स्प्रिंग है जिसके अंदर बेशुमार मुल्क हैं, उनकी बेबहा आबादी है, उस बेबहा एशिया स्प्रिंग के अंदर जितने भी मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उनको लीड करने वाला मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है पाकिस्तान। और याद रखिएगा, तुर्की एशिया स्प्रिंग में नहीं आता, वो एशिया स्प्रिंग में शामिल रहेगा, एशिया स्प्रिंग के साथ जुड़ेगा वो। तो ये जो ताकत बनने जा रही है, इस ताकत को देख रहा है रशिया, और रशिया को पता है कि ये क्या ताकत बनने जा रही है, चाइना को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है, मगरब को पता है ये क्या ताकत बनने जा रही है। अगर पता नहीं है तो बदकिस्मती से हमें पता नहीं है, हम इस कदर बेवकूफी के समुंदर में डुबकियां मार रहे हैं, गोते मार रहे हैं। मैं आपके सुनने वालों को, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर 10 लोगों को भी सुन ले, 10 लोगों के दिल में भी असर कर दे, तो मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम की ये कामयाबी है। हमें बहसियत मुसलमान, बहसियत पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का एक खैर ख्वाह के तौर पे हमें खड़े होना है, बावकार तरीके के साथ खड़े होना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जब एक दफा आप खड़े हो गए, जब आपकी हाँ में हाँ मिल गई, जब आप लाइक माइंडेड हो गए, जब आपका सोचने का अंदाज एक हो गया, तो देखिएगा ये कुव्वत, ये कितनी बड़ी कुव्वत बन जाती है, ये कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। हमें जो तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है, उसकी वजह से हम रेजा रेजा हो चुके हैं। ये रेजा रेजा हुए जो लोग हैं, इनको इज्तमा की जरूरत है, इनको इकट्ठे होने की जरूरत है, इनको एक ही तरह सोचने की जरूरत है, और खुदा का वास्ता है। आप वो जो साजिशें जो हुई थी खिलाफत राश्ता को तबाह की जो सबब बनी थी, जो मौलिया दौर के जो तबाही का जो सबब बनी थी, जो इस्पानिया की हमारी जो मुस्लिम कुव्वत का जो जो तबाही का बायस बनी थी, जो मुसलमानों के तमाम बड़े बड़े जो फातहीन थे उनकी जो तबाही का बस बायस बनी थी, वो थी गद्दारी, और वो थी हमारे जो उम्मत के मुसलमान उनके जो मुखालफ थे, जो दुश्मन थे, वो गद्दार उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए थे हमारे अंदर। वो खुद घुस बैठे थे हमारी शक्लें बना के, हमारा लिबास पहन के, हमारे चोगे पहन के, हमारी तारीख को याद करके, हमारे कुरान को याद करके, हमारे जैसी दाढ़ियां रख के हमारे अंदर घुस के, हमारे सिस्टम के अंदर घुस के, हमारी हुकूमतों के अंदर घुस के, और हमारे मीडिया के अंदर घुस के हमें जलीलो ख्वार कर रहे हैं। आज इस वक्त मेरा दिल आपका पत्नी खून के आंसू रोया कि नहीं रोया? सारी उम्मत के एक एक शख्स का दिल रोना चाहिए, खून के आंसू रोना चाहिए। खाना काबा के अंदर इस साल 2020 का जो हज हुआ है, जरा उसके ऊपर नजर तो चढ़ाइए। वो जो 10,000 लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से लाइन में लगाकर जो हज करवाया गया है, जो हज के लवाजमात पूरे करवाए गए हैं, जो सही करवाई गई है, जो तवाफ कराया गया है, जो मिना पे ले जाया गया है, आप उन 10,000 लोगों के चेहरों के ऊपर गौर तो कीजिए, और उन 10,000 लोगों के अंदर कितने लोग हैं जो गद्दार हैं, कितने लोग हैं जो दुश्मनों ने अपने अपने उसमें दाखिल कर दिए गए हैं, और वह चप्पा चप्पा वो इस वक्त आपका जो ब्लू प्रिंट है वो बना रहे हैं सऊदी अरेबिया का। राजा साहेब, अगर आपने और आपके सुनने वालों ने इन बातों के ऊपर गौर नहीं किया तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चों को आज से भी इंतहाई बुरे हालात देखने पड़ेंगे। और अगर आप मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इससे भी बुरे हालातों वाकयात अपने मुल्क के देखना चाहते हैं, अपनी कौम के देखना चाहते हैं, अपनी नौजवान नस्ल के देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं और मुस्लिम उम्मा का देखना चाहते हैं, तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर आपको मना कोई नहीं कर सकता, फिर आपको आपको मना करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। फिर तो सारा दुश्मन, जितने दुश्मन आपके हैं, वो चाहते ही यही है कि आप इसी तोड़फोड़ का शिकार रहो, आप इसी आपस में झगड़ आप आपस में झगड़ते रहो, आप इसी तरीके से एक दूसरे को नंगा करते रहो। अगर आपको पता नहीं है तो ये भी जान रखिए, सऊदी अरेबिया के एक सबका इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर ने जो राज अफशा किए हैं, जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाते हैं, जो हमारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, हमारी अफवाज के खिलाफ जाते हैं, हमारी उन पॉलिसियों की तरफ जाते हैं जो कि दुश्मन इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों के खिलाफ हमने जो हमने तैयार कर रखी थी, वो एक शख्स ने किसी कॉन्फ्रेंस में वो बयान कर दी है। तो ये वो सारे वो काम हैं जो गद्दार इस वक्त कर रहे हैं। गद्दारों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपके दरमियान आपको अंदाजा भी नहीं है उन गद्दारों की बनाई हुई पॉलिसियां आपके मीडिया के जरिए आपके घरों के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। वो मीडिया का जो बयान करदा जहर है, जो बयान करदा जो तरबियत है, जो बयानिया है, आपके बच्चों के जहनों को वो मफलूज कर रहा है। दिन ब दिन वही काम आपके बच्चों के साथ पेश आ रहे हैं जो आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले जो पेश आना शुरू हो गए थे खिलाफत राशिदा के साथ, जो उस वक्त के बड़े बड़े इंतहाई बड़े बड़े जंगजुओं के खानदानों के अंदर पैदा कर दिए गए थे। तो आज जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस नंग धड़ंग हम कैफियत का शिकार होते जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए इस वक्त जो साहिब नजर हैं, कम अज कम वो तो उठे, जो साहिब नजर हैं वो तो आंखें खोलें, आंखें खुल जाए तो देखने के बाद, गौर करने के बाद, जायजा लेने के बाद बयान तो करें उन मासूम लोगों को, और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मासूम घर वालों को तो बता दें। वो साहब नजर, वो अहल नजर, वो अहल जिक्र, वो जो जो जो जो जो, जो, जो फिक्र करने वाले लोग हैं वो तो कम अज कम खड़े हो जाएं, वो और कुछ ना करें, वो कहीं कोई तब्दीली ना लेके आए। अपने घर के अंदर जो मासूम नौजवान नस्ल है जो भटक रही है, जो बिला वजह इस गंदे मीडिया के जो प्रोपेगंडा के साथ लहक जाते हैं, उनको तो कम अज कम पैगाम दे दें जो सही पैगाम है, जो असल पैगाम है। आपके टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे हराम खोर लोग हैं, एंकर पर्सन है आपके, ऐसे ऐसे मरदूद लोग हैं, वो आपकी इस्लाम की तारीख को मसख कर रहे हैं, वो आपके इस्लाम की तारीख के बड़े बड़े जो जो जो जो जंगजू थे उनको उनके उनकी उनकी तारीख को, उनके मालूमात को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। कोई मुल्क और कोई कौम अपना वकार बढ़ा ही नहीं सकती है, किसी मुल्क का परचम सरबुलंद हो सकता ही नहीं है जो अपनी तारीख के शाहकार जो वाकयात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके जो फतुहात हैं, जो उसको रद्द कर दे, जो अपने कायदीन के खिलाफ जो बकवास करें, जो अपने कायदीन के खिलाफ, जो अपने मेमारे मुल्क मिलत है, जो उनके खिलाफ बकवास करें। इन हराम खोरों की आंखों के अंदर दोनों उंगलियां क्यों नहीं घुसेड़ते आप? इनका गिरेबान पकड़ के इनके टेंटवे के ऊपर अपना गोडा क्यों नहीं रखते इसके आप? वो क्यों आपके टीवी के ऊपर बैठ के आपके घरों के अंदर दाखिल होके आपके घर वालों को क्यों क्यों क्यों क्यों, क्यों वो तबाह बर्बाद करते हैं उनकी सोच को? और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहन भाई जो इस वक्त आपके इस रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, मेरे वो बहन भाई हैं यार, मुझसे किसी चीज की मुखालफत करनी है तो कर लो, मुझे बुरा कहना है तो बेशक कह लो, कोई दिल में दो चार गालियां तो वो भी निकाल लो, किसी की मुखालफत में, किसी की हमायत में जो कुछ करना चाहते हो मेरे साथ बुरा सलूक कर लो, मैं हाजिर हूं, कर लो मेरे साथ जो बुरा सलूक करना है, लेकिन खुदा का वास्ता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए, मिल्लत के लिए, अपने परचम के लिए, अपने सरजमीन के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए भी तो कुछ सोच लो बराहे करम। आज ही अगर जो मैंने पॉइंट किए हैं, आज गूगल का जमाना है, इंटरनेट का दौर है, आपके पास सबके पास फ्री इंटरनेट मौजूद है, तो बराहे करम जो मैंने जिन लड़ाइयों का जिक्र मैंने आपके साथ किया है खोल लीजिए। अगर आपको जरा सा भी आपके दिल के अंदर दर्द है, अगर आपकी आंखों में किसी वक्त किसी की बात सुनकर कभी आंसू आते हैं, तो उम्मत मुसलमा की इस वक्त जो हालत है उसके ऊपर दो आंसू बहाइए, इंटरनेट पे जाइए, इन तमाम हालातों वाकयात को गौर से देखिए कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये किस तरह हम बढ़ रहे हैं, किस तरह हम जा रहे हैं, हम क्यों अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ के अपने ही पैरों को काटने के लिए क्यों हम मुसर हैं, क्यों हम अपने बच्चों के मुस्तकबल जो आज से सिर्फ 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैंने भी मर खप जाना है। आप लोगों में से भी अक्सर जो मेरी बात सुन रहे हैं, कोई मुझसे पहले चले जाएंगे, कोई मुझसे थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, मर खप जाएंगे, जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे हम सबको, लेकिन पीछे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे जो आने वाले हैं, उनको हम क्या जमाना दे के जा रहे हैं, क्या जमाना उनको मिलने वाला है, जरा इसकी तरफ भी गौर कर लीजिए। आपको पीने के लिए कौन से मशरूबात चाहिए, वो पीने के बाद आपको कितना मजा आता है, कितना सुकून आता है कि नहीं आता है, वो मशरूबात आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आपको मगरब पसंद है कि आपको मशरक पसंद है, आपको आजादी पसंद है कि आपको इस्लामी तहजीब पसंद है, आपको सेकुलरिज्म पसंद है कि आपको इस्लामी तहजीब पसंद है, कुछ भी आप, लेकिन आप उसका नितारा तो निकाल लीजिए, आप उसका नितारा तो निकाल लीजिए कि वो जो सेकुलर कर रहे हैं आपको, जो आपको सेकुलर करना चाहते हैं, उनका असल मिशन क्या है? वो जो लोग आपके बच्चों के हाथों के ऊपर ये प्ले गेम्स, ये वीडियो गेम, ये खून खून खवार कत्ल वगैरह के जो वीडियो गेम आपके हाथों में पकड़ा के आपकी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, उनके जहनों को तबाह कर रहे हैं, क्या वही कत्ल वगैरह की वीडियो गेम उनके बच्चे खेलते हैं? जरा गौर कीजिए, YouTube के ऊपर, Google के ऊपर ये सारी मालूमात हैं, आपके बच्चों के हाथ के अंदर जो उरियानी है, आपके बच्चों के हाथ के अंदर ये ड्रामे और जो फिल्में हैं, आपके बच्चों के हाथ में ये PlayStation और ये जो जो मार धाड़ की, कत्ल गारत की, खून खराबे की जो वीडियोज हैं, जो ये जो वीडियो गेम्स हैं, क्या ये सेम सारी की सारी चीजें उनके बच्चों के हाथ में भी हैं? अगर आप जरा सा गौर कर लें, शराब के नशे में रहने वाले लोग मुसलमानों, नफरत में और तकसीम के अंदर तकसीम हुए मुसलमानों, पाकिस्तानियों, मुख्तलिफ तरह के नशे में गिरफ्तार लोगों, जानियों, जना में गिरफ्तार लोगों, चर्स के नशे में गिरफ्तार लोगों, शराब के मुख्तलिफ जायकों में गिरफ्तार लोगों, शराब जिसकी शक्ल भी पेशाब जैसी है उसके रसिया लोगों, जरा ये गौर करो, तुम्हारे बच्चों को जो चीजें पकड़ा दी गई हैं, जो उरियानी, जो फहाशी, जो नंगी फिल्में, नंगे ड्रामे, उरिया बातचीत, हाँ जी, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया, ये वीडियो गेम जो आपके बच्चे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों के हाथों में भी वो है? अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो नहीं है। मैं यहाँ राय साहब आपसे ज्यादा चाहूंगा, वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन, मेरा काम सच बोलना है, आप तक सच पहुंचाना है, मुझे को सच हक बात मिले तो मेरा फर्ज है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, मैं वही काम कर रहा हूं। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद, हम लोग जिंदाबाद, राजा साहब आप जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद इंशाल्लाह, और मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद।
1: सामान ये थे शाकर कुरैशी साहब, जो कि बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ थे।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और ताकत दे और उसमें जो है वो जान पड़े। आखिर में मुमताज़ मलिक साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देंगी यहाँ सामाइन, हमारे सामाइन को?
1: कोरोना के हवाले से तो पैगाम ये होगा सब बहन भाइयों के लिए कि ये घरों में रहिए या बाहर निकलिए। आप तो बाहर निकल सकते हैं, जहां नहीं निकल सकते वहां पे SOPs का ख्याल रखें, मास्क का, सैनिटाइजर का इहतमाम करें, एक दूसरे के गले लगने से परहेज करें। बेशक ईद के दिन है, ईद गले मिले बगैर भी हो जाती है, दिल मिलने चाहिए, गले मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीरी बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप घर से बाहर निकलें, हम आपके साथ हैं हक के खुद इरादियत के लिए। वो लोग जो आपको वरगलाते हैं, जो आपको ये सिखाते हैं कि हम अलग से मुल्क बन के कोई आपको कुछ अलग से ही जन्नत दे देंगे, उनके धोखे में ना आए और अलग से इसको अमरीकी अड्डा बनाने के बजाय कश्मीर को किसी ना किसी एक पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों में से जहां चाहते हैं वोटिंग राइट के लिए जद्दोजहद करें, इंसानी हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए जद्दोजहद करें और वहां पे अपने वोटिंग राइट को तस्लीम करवाकर दोनों मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क के साथ अपने इल्हाक को यकीनी बनाएं ताकि आपकी जिंदगियां और इज्जतें बचाई जा सकें। और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज हैं उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मुश्तरका तौर पे सारी जो मीटिंग्स करते हैं आप, उसमें आप पाकिस्तानियों के जज्बात का एहतराम किया करें। हम यहाँ पर अपने किसी मकसद के लिए नहीं बोलते, हमें कोई फायदा नहीं है यहाँ पर हम आपके लिए आवाज उठाएं ना उठाएं, हम घरों से ना भी निकले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह कि कश्मीर हमारे दिल का हिस्सा है, हमारे हमारी रूह का हिस्सा है। और दूसरा मजहबी नहीं, सिर्फ आप देखें तो इंसानी तौर पे भी एक बहुत बड़ा अलमिया है दुनिया का इस वक्त जो कश्मीर में चल रहा है, और हम बतौर इंसान भी उसमें उनकी पूरी पूरी अखलाकी हिमायत करते हैं और उनकी वोटिंग के जरिए उनका फैसला जो है सुनने के मुंतजर हैं ताकि हम 70 साल 72 साल के इन मसाइल से निकल सकें। तो बराए मेहरबानी मुखलिस होकर चलिए और खवातीन बाहर निकलें, आवाज उठाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी खवातीन भी आपसे आगे खड़ी हुई आपको मिलेंगी वहां।
0: मुमताज मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया।
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा सब दोस्तों का जो भी सुन रहे हैं यहाँ पर। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, मकसद ये कि जो हमारे अंदर तकलीफ पल रही होती है उनको आप तक पहुंचाना होता है। और हमारे लहजे से ज्यादा हमारे अल्फाज पे गौर कीजिए कि हम ये किस हद तक सच है नहीं है। तो बस इसके अलावा ये कि आपकी दुआओं में हमेशा याद रहना चाहती हूँ, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत
0: पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।
0: समाइन, ये थी मुमताज मलिक साहिबा जो कि फ्रांस की फिजाओं से अपनी बात कर रही थी, उनकी अब आपने बात सुनी। समाइन, हमारा किसी से मुत्तफिक करना जरूरी नहीं है, अगर उस पर कोई बात करना चाहे तो अदारा आपकी आवाज का जो टाइम है
2: आज़रा FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।